हामी चाहिँ भविष्यको भलाई नै त हामी चाहिँ भविष्यको भलाई नै त लेकिन लेकिन बेदबोर्ड आंको लिंबा का मिली ले बोले चामी इतने डाने अमुने वाला बगा मिली कुछ कतर वाला बच्चों को मिनो हैं अगो लाबा चिप कुचुरु कोई मौई तू कोले हैं अगी वो अगो लाबा चको मिनो हैं अगो लाबा चिप केरो आते हैं एक आपके में लाइट तू कोले अगो लाबा का आप साइन डो लाबा सोशियो तो ये हमें जो सीखा तू अब यार मुताबु ताजी ये हमें जो भविष्य को बुलाई नहीं था ऐसे को बीत को आरोह हुए थे गोरो इसाई यहाँ मीटिंग अलियात ना तो किन्हें किंगला ले एंड राय नहीं है अगर अलियात ना तो किन्हें कोरोम का पैसा है ना तो क्या मनामी से को बीत क्या इंगला ले बिरची जी दब को गए थे ले ची यात्रे थियो ले ची मीट मार बैठे अगर बाबी होने तो को मेरे से के मौज के उकुली एंड राय ने कासो वी आना मौन उकुली है वी आना मौन उकुली है ये इंगेन इंगेन इले नांगो मीट सिया सा जांगे बिरोतियो जांगे गला ला तीन लीन कोंगा लाल ना दीन देत कोंगा लाल तुगे नीन देत कोंगा लाल मेरुए तीन देत कोंगा लाल लिप्सिगी सीन देत कोंगा लाल बोगो तीन देत लुक आई से जान तो को लिस्ट चंबा कोंगा लिंचिन यंग कोगी तू ये गे लकी बोगो लिंचिन अन्य चेक